जह कह तह भरपूर शब्द दीपक दीपायो जय सिख है संग्रहयो तत हर चरण मिलायो। तिन बेदियन की कुल बिखै प्रगटे न

देवा एक कवन गुण कही है, बेशुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत न किन्हीं। सतगुरु

सतगुरु गुरा गुरु अबनासी पीरा पीर वखाणिया नाथा नाद साध संगवासी गुरमुख पंथ चलाया गुरसिख माया विच उदासी सनमुख मिल पंच आखियन बिरद पंच परमेश्वर पासी गुरमुख मिल परवान पंच साध संगत सच खंड बिलासी गुरदर्शन गुर शब्द है गुरदर्शन गुर शब्द है निज घर पाए भगत रह रासी मिठा बोलन निव चलन खट खवालन आस निरासी सदा सहज बैराग है कली काल अंदर परगासी साध संगत मिल बंद खलासी निरंकार आकार कर सतगुरु गुरां गुरु अबनासी।

0: वस्त्र छीनत द्रौपदी रखी लाज जिन जिन सेवया अंतवार रे मन सेव तू पर तने सेवया बाल बुद्ध त्रिलोचन गुर मिल पही सद सिद्ध बेणी को कुर कियो प्रगास रे मन तू
1: भी हो है दास
0: जय देव त्याग्यो अहमे नाई उधरयो सैन से मन डीग न डोले कहूं जाए
1: मन तू ही तरसे शरण पाए
0: मन तू भी
1: तरसे

0: ही खाए
1: बंद
0: खलासी पाने होए हो राख न सके कोए
1: देखो खाए के आखन पाए ओ जाने जिती हम खाए
0: आपे जाने आपे दे आठे सिपे कई के
1: जिसनो बख्शे सिर सला नानक पातशाही पातशाह
0: अमूल गुण मूल व्यापार मूल व्यापारी है मूल भंडार
2: अमूल आवे अमूल लै जाने अमूल पाए अमूल
1: समाए
0: अमूल धर्म अमूल दीवान अमूल तुल अमूल प्रवान
1: अमूल बख्शीश अमूल निशान अमूल कर्म अमूल फरमान
0: अमूल बख्शीश अमूल अमूल

0: अपने चिल्ले परवान आप नाथ नाथी सजा के दवरा साध
1: जो भी जो कार चलावे लिखे आवे
0: आदेश से आदेश आद नील अनाद नाह जुग जुग एक वेश
1: एक
0: संसारी एक भंडारी एक लाए दी बाण
1: जिस पावे

0: है, निदान है, दुबड़ है, दर्ग है,
1: नील है, नाद है, जे है, जात है,
0: जन्म है, पंड है, पूत है, पंड है,
1: गंज है, पंच है, जूच है, जंज है,
0: मीक है, रफीक है, दंद है, बंध है,
1: भूज है, सूज है, काल है, जाल है,
0: ला है, जा है, नंद है, महंत है,
1: लीख है, निष्ठीक है, निलंब है, सांभ है,
0: अगम है, जम है, पूत है, छूत है,
1: दुख है, शोक है, कर्म है, परम है,
0: जीत है, पीठ है, वाह है, गा है,
1: मान है, निदान है, नेक है, फिर एक है,
0: पुजंग प्रिया छंद,
1: नमो सर माने समस्त निदाने, नमो देव देवे अपेक्षी अपेवे,
0: नमो काल काले, नमो सर पाले, नमो सर गौणे, नमो सर पौने,
1: नंगी नाथे ने संगी प्रात प्रमाते, माने नमो मान माने,
0: नमो चंद्र चंद्र, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने,
1: नमो नित नित्य, नमो नाद नाते, नमो पान पाने, नमो पाद पादे,
0: अनंगीय नामे समस्ती स्वरूपे, प्रबंगी विमाते समस्ती विभूते,
1: कलंकम बिन्याने कलंकी स्वरूपे, नमो राज राजेश्वरं परम रूपे,
0: नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे, नमो राज राजेश्वरं परम प्रदे,
1: नमो शस्त्र पाने, नमो अस्त्र माने, नमो परम ज्ञाता, नमो लोक माता,
0: नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते,
1: नमो नित नारायणे क्रूर कर्मिणो, नमो प्रेत प्रेत देवे सुदुर मे,
0: नमो रोग हर्ता, नमो राग रूपे, नमो साह सहन, नमो भूप भूपे,
1: नमो दान दाने, नमो मान माने, नमो रोग रोगे, नमो स्तन स्नाने,
0: नमो मंत्र मंत्रंग, नमो जंत्र जंत्रंग, नमो इष्ट नमो तंत्र तंत्रंग,
1: सदा सच दानंग सर्व प्रणासी, रूपे रूपे समस्त निवासी,
0: सदा सदा बुद्धा वृत करता, अदो उदंग उदंग उघटा,
1: परम परम परमेश्वरं रोष पालंग, सदा सर्वदा सिद्धा तदयालंग, तेरा जोर चाचरी शान, जले है, थले है, पीत है, बे है,
0: बबू है, जू है, देश है, पेश है,
1: भुजंग प्रिया गादे बादे नंदी स्वरूपे,
0: माने समस्ती निदाने,
1: नमस्तु निनाथे, नमस्तु परमाते,
0: नमस्तु अंग गंजे, नमस्तु अंग पंजे,
1: नमस्तु
0: निनाथे,
1: नमस्तु पंग पाले,
0: नमो
1: राज राजे, नमो साज साजे,
0: नमो सहाय, नमो महा महाय,
1: नमो गीत गीते, नमो प्रीत प्रीते,
0: नमो रोग रोगे, नमो शोक,
1: नमो सर्व रोगे, नमो सर्व पोगे,
0: नमो सर्व जीतं, नमो सर्व पीतं,
1: नमो सर्व ज्ञान, नमो परम तानं,
0: नमो सर्व मंत्रं, नमो सर्व जंत्रं,
1: नमो सर्व दृश्यं, नमो सर्व कृष्णं,
0: नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे,
1: नमो जीव जीवं, नमो बीज बीजे,
0: अखिल्य अपिज्य समस्तं पुरसिज्य,
1: कृपालं स्वरूपे कुकरं पनासी,
0: सदा सर्वदा रसदं निवासी,
1: चल प्रशांत साध अमृत कर्मे, अमृत तर्मे,
0: अखल जोगे, अचल पोगे,
1: अचल लाजे, अठल साजे,
0: अखल तर्मंग, अलग कर्मंग,
1: सर्वंग दाता, सर्वंग ज्ञाता,
0: सर्वंग पाने, सर्वंग माने,
1: सर्वंग प्राणंग, सर्वंग त्राणंग,
0: सर्वंग भुक्ता, सर्वंग दुक्ता,
1: सर्वंग देवंग, सर्वंग पेवंग,
0: सर्वंग काले, सर्वंग पाले,
1: वाल शांत व प्रसाद आद रूपनाथ बुर्ज जोधपुर कपार,
0: देव पे वाददार,
1: सर्व पालक, सर्व कालक, सर्व कोपन काल,
0: जत जत ब्राजी अवधूत रूप साल,
1: नाम ठाम न जात जाकर रूप न नरेक,
0: आद प्रकतार मूर्त जो नाद सेख,
1: देश और न

0: चतुर्चक्र कर्ता चतुर्चक्र हर्ता
1: चतुर्चक्र दाने चतुर्चक्र जाने
0: चतुर्चक्र वर्ती चतुर्चक्र परती
1: चतुर्चक्र पाले चतुर्चक्र काले
0: चतुर्चक्र पासे चतुर्चक्र वासे
1: चतुर्चक्र माने चतुर्चक्र दाने
0: चाचरी सांधना सतर न मित्र न परम न पितर
1: न कर्म न काय जन्म न जाय
0: न चित्र न मित्र परे पवित्र
2: भगवती छंद तु प्रसाद कथते क्या चित देश है क्या पिछ पेश है
3: क्या
2: पिछ लोक है क्या दिशोक है
0: के
2: राजन प्रवाह है कि तन्मंग तो जा है के चतरंग कतरी है के चतरंग छतरी है
0: परमंग स्वरूप है
2: क्या देव है क्या आप पेव है
0: चतरंग भीन है के कह दीना
2: के रोजी रजा के रही में रहा के क्या फुल गुना है के सहन सा है राजा करीम है के कर्म करीम है
0: सर्वं कलिय के सर्वं दलिय
2: के सबत मान है के सबत दान है
0: के सबत कौन है के सबत पौन है
2: के सबत देश है के सबत पेश है
0: के सबत राजा
2: के सबत दीन है के सबत लीन है
0: के सबत जाओ के सबत पाओ
2: के सबत देश है के सबत पेश है
0: के सबत काज है के सबत पाल है
2: के सबत हंता के सबत गंता
0: के सबत पेकी के सबत पेकी
2: के सबत राज काज है के सबत राज है
0: के सबत सोख है के सबत पोख है
2: के सबत त्राण है के सबत प्राण है
0: के सबत देश है के सबत पेश है
2: के सबत काल है के सबत मान्य है सदैवन प्रधान है
0: के सबत जाप्य है के सबत थाप्य है
2: के सबत पान है के सबत मान है
0: के सबत इंद्र है के सबत चंद्र है
2: के सब अंकली में के परमंग फही में
0: या कल नाम है के सब कलाम है
2: के हसन रजू है तमाम रजू है
0: हमेशा सलाम है सलीगत मदाम है
2: गनीम और शिकस्त है गरीब और परस्त है
0: रतन मिकान है जमीन जमान है
2: जमीन तुम्हें जो तुम्हारा मैं रजूल निदान है
0: हरी फल जिम्मा जाए तेकीन है
2: अनेक तरंग है अपेद है अपंग है
0: जी जो नवाज है कनी मिखराज है
2: नकर सुपर तबुकर विभूत है
0: वक्त प्रायस चुक्षिता है
2: सदैव स्वरूप है अपेद या रूप है
0: समस्त प्राज है स्तर सर्व साज है
2: समस्त सलाम है सदैव काम है
0: नवाज स्वरूप है गाध है अनूप है
2: ओंकार रूप है अनाज रूप है
0: अंगी नामित पंगी त्रिकाम है
2: त्रिपंगन त्रिपाद्य अगंजे अगाधे त्रिपक स्वरूप है अचिज है छूत है
0: प्रवास है
2: नौकर प्रभा है सदैव सदा है
0: स्वरूप है प्रदुक्त अनूप है
2: नौकर सदा है विभुकर प्रभा है
0: अनोखा स्वरूप है प्रदुक्त अनूप है
2: चौटरी छंद अपंग है अनंग है अपेक है अलेक है
0: कर्म है कर्म है नाथ है जुगात है
2: अजय है अपय है अपूत है अदूत है
0: नाश है दास है दंध है पंध है
2: अपकत है ब्रकत है अनाश है प्रकाश है
0: जिन्त है सुनित है।

0: गंता
1: सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता
0: सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता
1: सर्वं प्राणं सर्वं पुराणं
0: सर्वं कर्मं सर्वं तर्वं
1: सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता
0: सावधान त्वया प्रसाद नमो नरक नाशे सदा अवन प्रकाश
1: अनंगं स्वरूपे पंगं विभूते
0: परमात्म परमात्मे सदा सर्व साथे
1: एकाद स्वरूपे पाद विभूते
0: अनंगी अनामत पंगी से कामे
1: निर्पंगी स्वरूपे सर्वंगी नूपे
0: न पोत्रे न सत्र न मित्र
1: दातन मातन जातन पातन
0: साकं श्री के मितो मीक है
1: सब प्रभा है जह
0: भगवती छंद तो है प्रसाद के जहर झूर है के हजर हजूर है
1: मैसल सलाम है समस्त कलाम है
0: के साहेब दिमाग है के उसने चिराग है
1: के कामल करीम है के राज करीम है
0: के रोजी दहिंद है के राज करहिंद है
1: रोजी माल है के उसका अजमान है
0: गनीबल के राज है गरीबल निवाज है
1: हरीफुल सिकन है रासुल भिकन है
0: लंकंग प्रनास है समस्त निवास है
1: अंचल करीम है
0: समस्त जुबा है के साहेब के राह है
1: नरकम प्रनास है बहस्त निवास है
0: सबल गौण है हमेशा रवन है
1: नीचे समस्त अजीज है
0: परम परम ईसा समस्त अजीज है जमीन जमा है अमीकल इमा है
1: कमाल है के जुरात जमाल है
0: क्या ट्रंक प्रकाश है के मित्र सुबास है
1: रुपया के मित्र विभूत है
0: के मित्र पसा है के आत्म प्रभा है
1: के चलांग नांग है के मित्र पंख है
0: मत बार छंद तो है प्रसाद मन मन प्रणाम गुण गुण बदाम
1: हर बार कांच खाना प्रबंध
0: अनगन प्रणाम मन मन सलाम
1: नन खंड पन्ना नमः
0: अनुभव अनास मन मन प्रकाश
1: उनका प्रणाम जल थम दाम
0: अंतेज अंग आसन अपंग
1: महापाद गत बतुदार
0: जल थल अमन तेसस अपंड
1: जल थल महंत दिश्व बेअंत
0: अनुभव अनास ते तो त्रास
1: आजन भाव एक है सुदाव
0: ओंकार आद कथनी अनाद
1: खल खंड ख्याल गुर बार काल
0: कर कर प्रणाम चित्र नाम
1: अंचित गात अजिजला बात
0: अंचित गात अंचित गात अनरज
1: टूट भंडार टट पार
0: अटीत धर्म अटीत कर्म
1: ब्रह्म दंत दाता महंत
0: हर बोल मना छंद तुआ प्रसाद करनाले है अड़काले है
1: खंडन है मन मंडन है
0: जगतेश्वर है परमेश्वर है
1: कारण है सर्व बारण है
0: तटके तन जगके कर्ण
1: माने जग जाने
0: सर्वंग पर है सर्वंग कर है
1: सर्वास्य है सर्वनास्य है
0: करना कर है विसंबर है
1: सर्वेश्वर है जगदेश्वर है
0: ब्रह्मंडस है कल खंडस है
1: पर्दे पर है करना कर है
0: जप जप थप थप
1: कृता कृता मृता मृता
0: मृता मृता करना करता
1: कृता कृता तरणी तृता
0: देश्वर है परमेश्वर है
1: कृता कृता मृता मृता
0: अजपा कृता मृता मृता
1: नायक है कल कायक है
0: विसंबर है करनाले है
1: नायक है सर्व पायक है
0: पंजन है और गंजन है
1: तापन है जप जापन है
0: अकलन कृता सर्वकृता
1: हरता कर है हरता हर है
0: परमात्म है सर्वात्म है
1: आत्म बस के जस के जस है
0: बजंग प्रयाद छंद नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्र
1: नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे
0: नमो अंधकार नमो तेज तेजे
1: नमो वृंद वृद्धे नमो बीज बीजे
0: नमो राज संतान संसात रूपे
1: नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे
0: नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने
1: नमो ज्योत ज्योत
0: नमो ज्ञान ज्ञाने।

0: नामे
1: काले नंदी रकामे
0: एक अठरी छंद अज अलह अपै अबै अगंज अपंज अलख अपख नाम अकाम अका अडा नरागे नरंगे न रूपे न रेखे भुजंग प्रिया छन नमस्तल प्रणाम समस्तल प्रणासे नकाम विभूते समस्तल स्वरूपे सदा सद्धानंद सत्यं पुनासी अजाय विभूते गजाय गनीमे।

0: चार जतीत दार सब जब चार हजार एक देख है।
1: श्री भगवान पले बिन भूपत एक रति बिन एक अलख है।
0: सोड़ से पात रंत बासु सात सुना।

0: पास की ओब ख्यान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैठ बतायो काहू ले पाहन पूछ तेरियो सिर काहू ले लिंग ले लटकायो
1: काहू ले

0: करपा अन अनमार महामूल कश पेद न जानत
1: महादेव को कह सदा से निरंकार का चिन्हत न पेद
0: आप अपनी बुध है जेती बनत पेन पेन तोय देती
1: तुमरा लखा न जाए पसारा के बिल सजा प्रथम संसारा
0: एक है रूप अनूप स्वरूपस प्यो राव के पुपा
1: अंडल जेर से गजगिने उत्पल खान बहुत रजगिने
0: को फूला जाव है बैठा को सिंपव संकर कैठा
1: सभी से चुकाय चंब आज वास रूप से अंब
0: अवरत छह मेरी तुम करो सिख उबार सिख संगर
1: दुष्ट जिते उत्पत उत्पाता
0: सकल मलेश करो रंका जय स्तोतव सर निफरे तन के दुष्ट दक्त हुए मुरे जो कल को एक बार ते आए हैं ताकि काल निकट न आए हैं कृपा दृष्टन जाए ने हर हो ताकि तब तन कमाओ हर हो एक बार जिन तुम्हें संवारा

0: कल्याण के लिए बच्चों क्या करे विचारिया जाने अनंत सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया
1: कर कृपा कृपे कटे ज्ञान अंजन सारिया
0: अंदर जा मोह तटाते।

0: एक परम पुले फिरे देश एक नाम लाग सवारिया
1: गुर प्रसादी मन पया निर्मल जिना पाणा पावे
0: कह नानक जिस दे प्यारे सोई जान पावे
1: आओ संत प्यारे हो अकाथ की करे कहानी
0: कह कहानी अकाथ के जित कित द्वार पाई है
1: कान मन तन सब सो गुरु को
0: हुकमनीय पाई है
1: हुकम मन हो गुरु के
0: गाव सच्ची बाणी
1: कहे नानक सुनो संतो कथे हो कत कहानी
0: ए मन चंचला चितरा किने न पाया
1: चतुराई न पाया किने तू सुन मन मेरिया
0: ए माया मोहनी जिन ए परम पुलाया
1: माया तो मोहनी तिने कीती जिन ठगोली पाया
0: कुर्बान कीता तिसे वेटो जिन मोह मीठा लाया
1: कहे नानक मन चंचल चतुराई किने न पाया
0: मन प्यारिया तू सदा साथ संभाले
1: उत्तम पूजे देखता चले नाही तेरे नाले
0: साथ तेरे चले नाही तिस नाल क्यों चले

0: गुरु से सन्मुख होवै होवै सन्मुख सिख कोई जियो रहै गुर नाले आप छड सदा रहै परनै गुर बिन गुर न जानै कोई जे को गुर ते विमुख होवै बिन सतगुरु मुक्त न पावै अनेक जूनी भरम आवै बिन सतगुरु मुक्त न पाए कह नानक विचार देखो बिन सतगुरु मुक्त न पाए बाणी ता गाओ गुरु केरी बाणी आसिर बाणी पीवो अमृत सदार हो हर रंग जप्यो सारंग पानी
1: नानक सदा गाओ ए सच्ची बाणी
0: आवो सिख सतगुरु के सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी
1: बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी
0: कहंदे कच्चे सुनदे कच्चे कंची आख बखाणी
1: हर नित करे रसना कहया कछु न जानी
0: चित जिन का हिर लिया माया बोलन पैर वाणी
1: नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी
0: गुर का शबिर तन है हीरे जित चढ़ाओ
1: शबद रतन जित मन लागा एहो होआ समाओ
0: शब्द सेती मन मिलिया सच्चा लाया पाओ
1: आपे हीरा रतन आपे जिसनो दे बुझाए
0: कह नानक शब्द तन है हीरे हीरा जित चढ़ाओ
1: सकत आप उपाय कह करता पे हुकम बताए
0: हुकम बताए आप विखे गुरमुख सह बुझाए
1: बंधन होवे मगर शब्द मन वसाए
0: गुरमुख जिसनो आप करे सो होवे एक सियों ले बुलाए
1: नानक आप करता पे हुकम बुझाए
0: सिमर शास्त्र कुन पाप विचार देवता सार न जानी
1: सार न जानी गुरु बाजो तत्ता सार न जानी
0: तही गुणी संसार भ्रम सत्ता सत्या रहन विहानी कह नानक सो तत् पाए जिस नाम दिन हर लिव लागै जागत रहन विहानी मनु क्यों विसारिया ए वटदाता जगन मैं आहार पहुंचावे अपनी लिव आपे लाए गुरु सदा संभालिया
1: नानक ए वटदाता सो क्यों

हे गुरु जी गणमांडे ठांडे दरबार तुझ बिन सुरत करै को मेरी दर्शन दीजै खोल के वार हाँ। तुम तन तनी उदार त्यागी श्रवणन सुनियत सो जस तुमार मांगो काहे रंक सब देखो तुम ही ते मेरो निस्तार जय देव नामा बेपस धामा तिनको कृपा पई है अपार कह कबीर तुम समरथ दाते

धातु पंच आप पावै जन नानक सतगुर नीले आपे हर आपे झगड़ चुकावै। हर आपे पंच तत्व

जन राम नाम गुण गावे, जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण न गवावे। रहाओ जो किछ करे सो आपे स्वामी, हर आपे कार कमावे, हर आपे ही मत देवे स्वामी, हर आपे बोल।

हरिक से नाम दोस्ती, हरिक से नाम रंग, हरिक से कुमेरा मसदनोई, हरिक से नाम संग, हरिक से नाम गोस्त मुँह मैला करण भंग, जाने बिरता जी की जाने कद न मुड़े रंग, हरिक को मेरा मसलती भणकण समरथ, हरिक को मेरा दाता रह सिर दात्या जग हथ, हरिक से दी मैं टेक है जो सिर सबना समरथ, सतगुरु संत मिलाए मस्तक धर के हथ, वड्डा साहिब गुरु मिलाया दिन तारिया सगल जगत, मन के इच्छा पूरिया पाया तुर संजोग, नानक पाया सच नाम सदी भोग महला।

उन्मद चढ़ा मदन रस चखिया, त्रिपवन पया उजियारा रहाओ। दोए पर जोर साही पाठी, पियो महारस भारी। काम क्रोध दोए किए जलेता, छूट गई संसारी। प्रगट प्रगास ज्ञान गुरगम्मत, सतगुर ते सुध पाई। दास कबीर तास मद माता, हुचक न कब हो।

अब तब जब कब तू ही हम तो प्रसाद सुखी सद ही रहाओ। तेरे भरोसे भगहर बसयो मेरे तन की तपत बुझाई। पहले दर्शन मगहर पायो पुन काशी बसे आई। जैसे मगहर तैसी काशी हम एके कर जानी। हम निर्धन ज्यो ए तन पाया पर मरते फूट गुमानी। करे गुमान चुभै तिस सूला को कडन को नाही। करे गुमान चुभै तिस सूला को कडन को नाही। अजे सो चूब को बिलल बिलाते नरके कोर पचाही। कवन नरक क्या सुर्ग बिचारा संतन दूरा दे। हम काहू की कान न कटते अपने गुर पर सादे। अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिले है सारंग पानी। राम कबीरा एक पय है कोई न सके पसानी। संता मानो दूता डानो ए कुटवारी मेरी। दिवस रैन तेरे पाओ मलो पलोसो केस चवर कर।

अब तो मिटिया न जाई, तेरे द्वारे तुम सहज की माथे मेरी दगाई। दागे होए सो रन में जूझै, बिन दागे पग जाई। साधु होए सो भगत पछानै, हर लए खजाने पाई। उठड़े मैं कोठरी परम कोठी विचार, गुरदीनी वस्त कबीर कहो लेहो वस्त समार। कबीर दी संसार कहो लीनी जिस मस्तक भाग, अमृत रस चिन पाया त्रिताका सोहाग। जे मुख वेद गायत्री निकसो निकसै, सो क्यों ब्रह्म विसर करै। जाका पाए जग सब लाके, सो क्यों पंडित हर न कहे। काहे मेरे बामन हर ना कहे, राम ना बोले भांडे दोजक परै। रहाउ आपन ऊच नीच कर भोजन, हठे कर्म कर उधर परै। चौदस मावस रच मांगे, कर दीप कले कुपरै। तू ब्राह्मण मैं कसी जुलहा, मोहे तोहे बराबरी कैसे की बनाए। हमरे राम नाम कै उभरे, भेद भरोसे पांडे डूमरै। तरवर एक अनंत डार साखा, ऊहक परतर रसपरिया। ए अमृत की बाड़ी है रे, तिन हर पूरे करिया। जानी जानी रे राजा राम की कहानी, अंतर ज्योत राम परगासा। गुरमुख बरलै जानी रहाओ, भवर एक पूह रस पीदा। बारे ले उरतरिया, सूर्य मदै पम चकूरिया। आकाशे फर फरिया, सहज सुन एक बिरबा उपजिया। धरती जल हर सोखिया, कहे कबीर हाँ तां का से। जिन्हे बिरबा देखिया, मुंदरा मुंदया कर झूली पत्र का। करे विचार रे करो विचार रे, खिंता एतन सियो अपना नाम करो आधार रे। ऐसा जोग कमावो जोगी, तप तप संयम गुरमुख भोगी। जप तप संयम गुरमुख भोगी, रहाओ बुद्ध विभूत चढ़ावो। अपनी सिंगी सुरत मलाई, कर बै राग फिरो तन नगरी। मन की कुगरी बजाई, पंच तत् लै हृदय राखो रहे निरालम ताड़ी। कहत कबीर सुनो रे संतु, धर्म दया कर बाड़ी। हृदय राखो रहे निरालम तारी, कहत कबीर सुनो रे संतो, धर्म दया कर बाड़ी। कवन काज सृजै जग भीतर, जन्म कवन फल पाया। पाव नितरन कारण चिंता, मन इक निमुख न मन ए मन लाया। गोविंद हम ऐसे अपराधी, जिन प्रभ जियो पिंड था दिया। तिस की पाओ भगत नि सादी, रहाओ पर धन पर तन परती। निंदा पर अपवाद न छूटै, आवागमन होत है फन फन। ए प्रसंग न टूटै, जे कर कथा होत हर संतन। एक निमक किनो मैं फेरा, लंपट जोर मूत मतवार। तिन संग सदा बसेरा, काम क्रोध माया मत मत सर। ए संपे मोह माही, दया धर्म अर गुर की सेवा। ए सुपनंतर नाही, दीन दयाल कृपाल दमोदर। भक्त बशल पहारी, कहत कबीर पीर जन रखो। हर सेवा करो तुम्हारी, जे सिमरन होए मुक्त द्वार। जाहि विकुंठ नहीं संसार, निरपो के कर पजावे तूर। अनहद बज अनहद बजे सदा भरपूर, ऐसा सिमरन कर मन माही। बिन सिमरन मुक्त कत नाहे, रहाओ जे सिमरन नाही ननकार। मुक्त करे उतरे वो पार, नमस्कार कर हृदय माहे। फिर तेरा आवन नाहे, जे सिमरन करे तो केल। दीपक बाद तरयो बिन तेल, सो दीपक अमर संसार। काम क्रोध का डीले मार, जय सिमरण तिरगत होए। सो सिमरण कण परोए, सो सिमरण कर नहीं राख उतार। गुर प्रसादी त्रिपार, जय सिमरण नाही तो कान। मंदर सोवै पट अमृतान, सेज सुखाली बिकसै जीव। सो सिमरण तो अनदन पीओ, जय सिमरण त्रि जाय बुलाए। जय सिमरण तुझ पोहि न माए, सिमर सिमर हर हर मन गाइए। हे सिमरण सतगुर ते पाइए, सदा सदा सदा सिमर दिन रात। ऊठ बैठ सास ग्रास, जाग सोए सिमरण रसपोग। हर सिमरण पाइए संयोग, जय सिमरण नाही तुझ पार। सो सिमरण राम नाम आधार, कह कबीर जा का नाही अंत। कह कबीर जा का नहीं अंत, तिसकै आगे तंत न मंत। राम कली कर दूजा बाणी, कबीर जी की एक ओंकार। सतगुर प्रसाद बंदच बंधन पाया, मुक्तै गुर अनल बुझाया। जब नक सिख ए मन चीना, तव अंतर मजन कीना। पन पवन पत पुन मन,
रहन खरा, नहि मृत न जन्म जरा रहाउ, उल्टीले सख सहारं, पेसीले गगन मजारं, वेदी अले चक पुवंगा, भेटी अले रायन संगा, चुकी अले मोह मै ऐसा, सुस्कीनो सूर ग्रासा, जब उम्बक परपुर लीना, तह बाजे अनहत बीना, बक्ते बक शब्द सुनाया, सुनते सुन मन बसाया, कर करता उतरस पारं, कहे कबीरा सारं, चांद सूर दोइस चूत स्वरूप, ज्योति अंतर ब्रह्म अनूप, कर रे ज्ञानी ब्रह्म विचार, अंतर ज्योत तरया पसार रहाउ, हीरा देख हीरे करो आदेश, कह कबीर निरंजन अलख निरंजन अलेख, दुनिया हुशियार बेदार, जाक मुसियर मुसियत हौरे पाई, निगम हुशियार पहुआ देखत जम ले जाई रहाउ, नीम पयो आब आब पयो, नीबा केला पाका चार, नाली एर फल शिवर पाका, मूर्ख मुक्त कवार, हर पयो खांड रेत में बिरख्यो, हसंती चुन्यो ना जाई, कहे कबीर पुर जात पात तज चीटी।

पंच दो असा अगर मैं एक किन पल दूर करै प्रभागी हरनाम ते आवे हर के भगत हरै तिनकी संगति प्रभु जाचो मैं मूल मुक्त निस्तरै कृपा कृपा तार जग जीवन रख लेवो शरण परै नानक जन तुमनी शरणाई हर राखो नट महला चौथा राम जप जन रामे नाम रलै राम नाम जप्यो गुरु बचनी हर धारी हर कृपलै रहाउ हर हर अगम अगोचर स्वामी जन जप मिल सलल सललै हर के संत मिल राम रस पाया हम हाँ जन के बल बललै प्रभु गौतम हर नाम जन गायो सब दाल दुख दलै विच देही दुख असाध पंच तातु हर किए किन परलै हर के संत मन प्रीत लगाए जो देखे सास कमलै उनवे कन कन कन हर गर जे मन विकसै मोर मुरलै हमरे स्वामी लूच हम लाई हम जीवै देख हर मलै जन नानक हर अमल हर लाई हर मेलो अनद पलै नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर नाम सखै गुर प्रसादी हर नाम ते आयो हम सतगुरु चरण पखै रहाउ ऊतम जगनाथ जगदीश हम पापी शरण परखै तू वड पुरख दीन दुख पंजन हर दियो नाम कै हर गुण नीच ऊच हर गुण ऊच नीच हम गाए गुरु सतगुरु संग सखै ज्यो चंदन संग बसै निबिरखा गुण चंदन के बसखै हमरा अवगुण बिकिया बिखे कै बहु बार बार निमखै अवगुण यारे पात्र भारे हर तारे संग जन कै जन कौ तुम हर राखो स्वामी सब तिनके पाप कृखै जन नानक के दयाल प्रभु स्वामी तुम दुष्ट धारे हरण कै नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर राम रंगे हर हर कृपा करी जगदीश हर त्यायो जन पग लगै रहाउ जन्म जन्म के पूर चूक हम आए प्रभु शरण गै तुम शरणागत प्रतपालक स्वामी हम राखू वड पाप गे तुमरी संगत हर को ना उधरियो प्रभ किए पतत पवगे गुण गाव शीपा दुष्टारू प्रभ राखी पै जन गे जो तुमरे गुण गाव स्वामी हो बल बल बल तन गै पवन पवन पितर सब किए जय धूरी परी जन जह धूर परी जन पगै तुमरे गुण प्रभ कह ना सके है हम तुम वड वड पुरख बड़गे जन नानको दया प्रभ धारो मुसीहु तुम जन पगै नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर नाम सुने जगदीश जगन्नाथ कृपा प्रभ तारी मत गुरमत ना बनै रहाओ हर जन हर जस हर हर गाय उपदेश गुरु गुर सुनै बिलु पाव नाम हर काटे जब खेत किसान लुणै तुमरी उपमा तुम ही प्रभु जानो हम कह न सके हर गुण जैसे तुम जैसे प्रभु तुम ही गुण जानो प्रभ अपने माया फास बंद बहुत बंदे है जप्यो कुल खुलनै ज्यों जल कुंच तंदुए बंद और चेत मुखने स्वामी पर परमेश्वर तुम खोजो जुग जुगनै तुमरी था पाई न पावे जन नानके प्रभ बढ़ने नाट महला चौथा मेरे मन कल गीत अर परम

तुम जल नद हर मान सरोवर जूसी वह सफल न जन नानक हर हर हर हर वंश हर देवो हर किरपन नट नारायण महला चौथा पड़ताल ओंकार सतगुरु प्रसाद मेरे मन सेव सफल हर काल ले गुरु पग रे निरवाल सब दाल पंच दुख दाल हर हो नदर निहाल रहाउ हर का गृह हर आप सवार्यो रंग रंग महल बेअंत लाल लाल हर लाल हरे अपनी कृपा करी हर हर अपनी कृपा करी आप गृह आयो हम हर की गुर की है बसेठी हम आन दो आनंद पाए हर अपनी कृपा करी आप गृह आयो हम हर की गुर की है बसेठी हम हर हर देखे हम हर देखे भई निहाल निहाल निहाल निहाल हर आवते की खबर गुरु पाई मन तन आनंदो आनंद भई हर आवते सुने मेरे लाल जन नानक हर हर मिले भय गलतान हर निहाल निहाल नट महला चौथा मन मिल सतसंगत शुभवंती सुन अकथ कथा सुखवंती सब किलबक पाप लहंती हर हो लिखत लिखंती रहाउ हर कीर्त कल जुग विच उत्तम मत गुरमत कथा पजंती जिन जन सुनी मनी है जिस जन जन तिस जन के हो कुरबनंती हर अकथ कथा का जिन रस चखिया तिस जन सब पूख लहंती नानक जन हर कथा सुन तृप्त है जप हर हर हर होवंती नट हल्ला चौथा कोई आन सुनावै हर की हर गाल तिस कहो बल बल बाल सो हर जन है पल पाल हर हो मेर निहार रहाउ हर का मार्ग गुरु संत बतायो गुरु चाल दिखाई हर चाल अंतर कपट चकाबू।

कै शब्द सवारे मधुसूदन जगजीवन माधो मेरे ठाकुर अगम पारे एक बिनो बेनती करूँगा।

दुख विहाय विछड़िया का क्या विछड़ा मिलिया का क्या मेल साहिब सो सलाही है जिन कर देखिया खेल संजोगी मिलावड़ा इत तन कीते भोग विजोगी मिल विछड़े नानक भी संजोग मारू महला पहला मिल मात पिता पिंड कमाया तिन कर तै लेख लिखाया लिख दात जोत वडे आई मिल माया सुरत गवाई मूर्ख मन का

जय हर मनो मन पवन सिंह मृत पीजा मीर की चप्पल सो जुगत मन राखी है उडे न हंस न कंद शीजा मारू महला पहला माया मुई ना मन मुआ सर लहरी में मत बोहित चल सिर धर टिक साचा वखर जित

रहाओ। फिर सेती तन प्रेम रचाई, गुर के शब्द तथा चितलाई, सहज सती तन खरी सुहेली, त्रिखना तिखा तृष्णा तिखा नवारी जियो, सहसा तोड़े परम चकाए, सहज सिपती तन चढ़ाए, गुर के शब्द मरे मन।

मन अनदन त्याय हरण आओ सतगुर के वचन रातो आनंदन गुण गाओ रहाओ गुरमुख को जानिए जा सतगुर दी बुझाए सो सतगुर सलाहिया जे तू ए सो जी पाए सतगुर सोड़ दूजे अगे क्या करन अगे जाए जम पुरबदे मारिया बहुती मिल सजाए मेरा प्रभु प्रवाहे ना तिस्तन न तमाए नानक शरणागति भज पौ आपे पुछ मिलाए मारु महला चौथा कर दूजा को ओंकार सतगुर प्रसाद जप्यो नाम सुख जनक गुरबचनी हर हर शरण परै दालद भज सदामे मिल्यो भगति पाई तरै भगत बच्छल हर नाम करतार गुरमुख कृपा करे मेरे मन नाम जप उदरै त्रू प्रहलाद विदरदासी सत गुरमुख नाम तरै रहाओ काल युग नाम पधार पदारथ भगत जना उदरै नामा जे देव कवि तरलोचन सब दुख गाय चमरै गुरमुख नाम लगे से उदरै सब पाप टरै जो जो ना जपे अपराधी सब तिन कै दुख पर हरै दुख पर हरै बैसुहारवत अजामल उदरै मुख बोले नारायण नर हरे नाम जब उग्र सैन गत पाए तोड़ बंधन मुक्त करै जन को आप अनुग्रह किया अंगीकार किए सेवक प्याज रखे मेरा गोविंद सरन परै उदरै जन नानक हर कृपा तारी उतारो नाम हरे मारु मल्ला चौथा सिर समाज जप्यो लिवलाई साधक मुन जपया जति सती संतोखी त्याया मुख इंद्रा दिक रवया सरन परे जप्यो ते पाए गुरमुख पार पया मेरे मन नाम जप तरिया तन्ना जट बाल मिक मटवारा गुरमुख पार पया रहाउ सुरनार गणक धर भे जप्यो रिक पपरे हर गाया शंकर ब्रह्मे देवी जप्यो मुख हर हर नाम जपया हर हर नाम जपा हर हर नाम जिना मन भीना ते गुरमुख पार पया कोट कोट तैतीस ते आयो हर जपत्या अंत न पाया वेद प्राण सिमरत हर जपया पंडित हर गाया नाम रसाल जिन मन वसिया ते गुरमुख पार पया अनतरंगी नाम जिन जपया से मगंत न कर सकिया गोविंद कृपा करे थाय पाए जो हर जप मन पाया जो हर प्रभ मन पाया गुरु धार कृपा हर नाम दृढ़ाए हो जन नानक नाम लया मारू महला चौथा कर तीजा को ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर नाम निधान है गुरमत हर पत पाए हलत पलत नाल चलदा हरन ते लै छाए जिथे अव घट गलियां भीड़िया तिथे हर हर मुक्त कराए मेरे सतगुरा मैं हर हर नाम दृढ़ाए मेरे मात पिता सुदवंत पो मैं हर बिन अवरणा माए रहाओ मैं हर बिरही हर नाम है कोई आन मिलावे माए इस आगे मैं जोदड़ी मेरा प्रीतम दे मिलाए सतगुर पुरख दयाल हर सतगुर पुरख दयाल प्रभ हर मेले ढिल न पाए जिन हर हर नाम न चेत से पाग ही मर जाए ओ फिर जोन पवाई है मर जमे आवे जाए ओ जम दर बदे मारी हर दरगा मिले सजाए तू प्रभ शरणागति मुक्को मेल ले हर आए अवतार कृपा जग जीवना गुरु सतगुरु की शरणाए हर जीव आप दयाल हो जन नानक हर मिलाए मार महला चौथा ਹਉ ਪੂੰਜੀ ਨਾਮ ਦਸਾਈਂਦਾ ਕੋ ਦੱਸਿਆ ਤਨ ਰਾਸ ਹਉ ਤਸਵਿੱਟੋਂ ਚੌਖੰਨੀ ਹੈ ਹਉ ਤਸਵਿੱਟੋਂ ਖਨਕੰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮੇਲੇ ਹਰ ਪ੍ਰਪਾਸ ਮੈਂ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ

कहा दुलारियो हस्त भाव चरे किन पीतर अगन संग लै जा रियो मूड़े ते मन ते राम मूड़े ते मन ते राम विसारियो लून खाए करे हराम खोरी पेख नैन विदारियो रहाओ असाद रोग उपजियो तन पीतर तरतन काहू टारियो प्रभ बिसरत महा दुख पायो ए नानक तत विचारियो मारू महला पंजवा चरण कमल प्रभ राखे चीत हर गुण गावह नीता नीत तिसबिन दूजा अवर न को आद मद अंत है सो संतन की ओट आपे आप रहाओ जाके वस।

सूर मुक्ता शशि मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी अल्पाए सुभावत जैसे बसंत अलिपता सदा निर्मलाए जिस कृपा खुलिया जिस कर्म खुलिया तिसलहिया पड़दा जिन गुर पै जिन गुर पै मन्या सुभाए गुरमंत्र अवखद नाम दीना जन नानक संकट जोर न पाए रे नार इन विद पार पराए त्याए हर जी होए मृतक त्याग दूजा भाओ रहाओ दूजा। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

रमैया की कुंचित पुराणी कमल ते कम दृष्टानी जिंतु सास वार संगारिया गर्भ गुण में जिने वार वार व्यवस्था तुझे प्यारे दूदे भर जो बुण भोजन सुख सूद बिरत प्याव प्रसाद सैन मुख प्याव बैठ को दैन ए निर्गुण गुण कछ न बूझे बख्श ले तू नानक सीजे जय प्रसाद तरु पर सुख बसै सुत परात्मीत बंता संगत जय प्रसाद पिय शीतल जल सुखदाई पौन पाव कमूल जय प्रसाद भुगत सब रसा सकल समग्री संग सद बसा दीने हस पाव करणे तर सुना तिसे त्याग और संरचना ऐसे दोख मुड़े अंध व्यापे नानक काल दे उपर व्यापे आदन जो राखण हर तिस उपरीत न करे गुवार जा की सेवा नानत पावे तां सो मूड़ा मन

दस वसूले पाछे पावे, बस कारण भी खोट गुवावे, ना दे दस भी हिरड़े। तो मूड़ा को कहाँ करे जिस ठाकुर सो, तो मूड़ा को कहाँ करे जिस ठाकुर सो नाही चार। एक बने दस भी हिरड़े, तो मूड़ा को कहाँ करे जिस ठाकुर सो नाही चार। ताको कीजे सब नमस्कार, जाके मन लागा प्रा मीठा, सर्व सूताऊ मन उठा। जिस दिन अपना हुक्म मनाए आ, सर्व थोक नानक दिन पाए। अगण शापनी दे राज खात पीत बरतेन दौड़ास, अपनी मन कशबार साले अज्ञानी मन उस करे। अपनी बरती दावी को है, बस का विश्वास न हो है। जिसकी वस्त जाके राखी, प्रभु की आगे माने माथे, उससे चौगुण करे ने।

चर्च कथा सुपदी साधक संग मुख उजलोत साध संग मल सगली कोत साधक संग मटे बमान साधक संग करे सो ज्ञान साधक संग बुझे प्रण नीरा साध संग सब होतन वीरा साधक संग पाए नाम रतन साधक संग कुबर जतन साधकी महिमा वर्णे कौन पुराणी नानक साधकी सुभा ब्रह्मा समाणी साधक संग उचर मिले साधक संग सदा पर फूले साधक संग बसमंच साध संग व्रतरासमंच साध संग सब गिरे ने साधक संग नो होर बैन साधक संग न कदम तावे साध संग सदन पावे साधक संग माय ते पेन साध संग नानक पर सो प्रसन्न साध संग दुश्मन सामीत साधु के संग मा पुणी साध संग सुन बैरी साधक संग ना भीगा पैर साधक संग ना ही को मंदा साध संग जाने परमानंदा साधक संग नहीं हो ताप साधक संग ते सव्याप आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बने आए साधक संग न कभू तावै साधक संग सदा सुख पावै साध संग बस गुचर है साधु के संग अजर सह साधक संग बसे थानुचे साधु के संग मैल पहुचे साधक संग दृढ़ सब धर्म साधक संग केवल पार ब्रह्म साधक संग पाए नाम धान नानक साधु के कुर्बान साधक संग सब कुल उधारे साध संग साजन मीत कुटुंब निसारे साधु के संग सोतन पावे जिस अंधे सब कुवर सावे साध संग धर्म राय कर सेवा साधक संग सुभा सुरदेव साधु के संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साधक संग सर्व धन काम नानक साधक संग सफल जन्म साधक संग नाही कुछ काल दर्शन भीड़ तोत निहाल साधक संग कलोक हरे साधक संग नरक पर हरे साधक संग इहा उहा सुहेला साध संग बिचरत हर मेला जो इच्छा सोई पल पावे साधक संग न बिरता जावे पार ब्रह्म साधर दिवसे नानक कुदरे साध सुन रसे साधक संग सुनो हर नाव साध संग हर के गुण गा साधक संग न मानते विसरे साध संग सर पर निस्तर साधक संग लगे परम मीठा साधु के संकट कट डीठा साध संग आज्ञाकारी साध संगत भई हमारी साधक संग मिटे सब रोग नानक साध मिटे संजोग साधक महिमा वेदना जान जेता सुने तब ख्यान साधक माते गुंते दूर साधक मारे भरपूर साधक शोभा का नहीं अंत साधक शोभा सदा बेअंत साधक शोभा उच्च उची साधक शोभा मुचते मुची

0: ब्रह्म ज्ञानी होया स्पदि ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल लेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सु सर्व को शोक ब्रह्म ज्ञानी के दृश्यमान जैसे राज रंग को लागे तुलपवान ब्रह्म ज्ञानी के तीर्ज एक जो वसुदा को खोदे को चंदन ले ब्रह्म ज्ञानी का गुणाव नानक जो पाव का स स्वभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जल ब्रह्म ज्ञानी के मन हुए प्रगा जैसे तारु पर आकाश ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सतर समान ब्रह्म ज्ञानी के नाभिमान ब्रह्म ज्ञानी उच्च ऊंचा मन अपने सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी सजन पाए नानक दिन प्रव्याप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल किरी नाथ मरस ब्रह्म ज्ञानी चिन्ना ब्रह्म ज्ञानी की सब प्रमाया ब्रह्म ज्ञानी कश प्रण भय ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शे ब्रह्म ज्ञानी के दृश्य अमृत वर्षे ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी के निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी को प्रयास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाह ब्रह्म ज्ञानी पर पुकार ब्रह्म ज्ञानी के नाई धंधा ब्रह्म ज्ञानी धावत बंधा ब्रह्म ज्ञानी के सफल ब्रह्म ज्ञानी सफल फल ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी कै कै रंग ब्रह्म ज्ञानी के वसे प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी के नाम धार ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सह जागत ब्रह्म ज्ञानी अंगु त्यागत ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी के घर सदानंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सह निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संगहेता ब्रह्म ज्ञानी का होय चिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रव्याप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी भाई है ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए ब्रह्म ज्ञानी को खोज महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाय ब्रह्म ज्ञानी के सकल मन माये ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने पे ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश ब्रह्म ज्ञानी का कथन है जायद आखिर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बुखाने ब्रह्म ज्ञानी की कथ ब्रह्म ज्ञानी जान ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता ब्रह्म ज्ञानी सब जीव है नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विदाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब पुरहत ब्रह्म ज्ञानी का सगले कार ब्रह्म ज्ञानी आप निकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी सलोक
1: और तारे जो अंतर नाम सर में देखे भगवान निम्क निम्क ठाकुर नमस्कार नानको पर सगल निस्तार अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्श परत्रि रूप न पेखे नेतर साध किटेल संसंग हित कर न सुने काहू की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा गुर प्रसाद बिखिया पर हरै मन की वासना मन ते टरै इंद्री जित पांच दोख ते रहत नानक कूट मध्य को ऐसा परस वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न बिसन की माया ते हुए पैन कर्म करत होवे निकर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं वांछै केवल भगत कीर्तन संग राचै मंत्र अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ अवरै नाम जपावै नानको वैष्णो परम गत पावै भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागै दुष्ट का संग मंते बिनसै सगला भरम कर पूजै सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मल खोबै तिस भगवती की मत उत्तम होबै भगवंत की टहल करै नित नीत मंतन अर्पै बिशन प्रीत हर के चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै सो पंडित जो मन पर बोधै राम नाम आत्मै शोधै राम नाम सार रस पीवै उस पंडित के उपदेश जग जीव हर की कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जोन न आवै वेद पुराण सिमृत बूझै मूल सूखम मैं जानया स्थूल चौं वर्णा को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा देश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौं वर्णा मैं जपै को नाम जो जो जपै तिस की गत होए साध संग पावै जन कोए कर कृपा अंतर उर धारै पास प्रीत मुक्त पात्र को तारै सर्व रोग का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहु जुगत के तह न पाइय धर्म नानक तस मिलै जिस लिखिया तुर करम जिस कह मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत राम दास आत्म राम तस नदरी आया दास संतन पाई तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सुदास दरगह परवान अपनी दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सूझी परे सगल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नानक राम दास प्रभु की आज्ञा तुम हितावै जीवन मुक्त सो कहावै तैसा हरक तैसा सोग सदा अनंत नहीं बेयोग तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बखाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंक तैसा राजान जो वरता ईसाई जुगत नानको पर कहिए जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाऊ जे जित घर राखे तैसा तन नाऊ आपे करण करावन जोग प्रभावे सोई पुन होग पसरियो आप हुए अंत तरंग लखे न जाए पार ब्रह्म के रंग जैसी मादे तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता अविनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक।

अष्टपदी। कई कोट होए पूजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट भय तीर्थवासी, कई कोट बन ब्रह्म उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपी सुर होते,

न पाव है। कई कोट पाए अभिमानी, कई कोट आंदा ज्ञानी, कई कोट कृपण कठोर, कई कोट पैगात्म निकोर, कई कोट पर दर्ब को हिर है, कई कोट पर दुख न कर है, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट पर देश प्रमाहे। जित जित लाभ हो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना। कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्पो पाए, कई कोट पाथर बिरख निपजाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट सस्यर सूर नखियत्र, कई कोट देव दान इंद्र शर शतर। सगल समगरी अपने सूत धारै नानक, जिस जिस भावै तिस तिस निस्तारै। कई कोट राज तम सातक, कई कोट वेद प्राण सिमरतर शास्त्र, कई कोट की रतन संबंध, कई कोट नाना प्रकार जंत। कई कोट किए चर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे, कई कोट जक नृप साच, कई कोट भूत प्रे सूकर मृगाच। सब ते नेरै सब हूं ते दूर, नानका पलिप्त रहया भरपूर। कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक स्वर्ग निवासी, कई कोट जन्म जीव मर है, कई कोट बहु जूनी पर है, कई कोट बैठती काहे, कई कोट काल थक पाए। कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया में चिंत, जय जय पाणा तै तै राखे नानक, सब किश प्रभ कै हाथे। कई कोट भय बैरागी, राम नाम संग तिन लब लागी। कई कोट प्रभ को खोजंते, आत्म पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, तिन को मिल्यो प्रभ अविनाश। कई कोट मांगे सतसंग, पार ब्रह्म तन लागा रंग, जिन को हो आप सो परसन, नानक ते जन सदा धन धन। कई कोट खानी अर खंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई कोट होए अवतार, कई जुगत कीनो विस्तार, कई बार पसर उपासार, सदा सदा एक एक ओंकार। कई कोट की ने बहु पात, प्राप्त हुए प्रभ माय समातु, ताक अंत न जाने कोए, आपे आप नानक प्रभ सोए। कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होवते आत्म प्रगास। कई कोट तत् के बेते, सदा निहारा एको नेतरे, कई कोट नाम रस पीवै, अमर भय सतसद ही जीवै। कई कोट नाम गुण गावै, आत्म रस सुख सह समावै, अपने जन को सा सा समारे, नानक कोई परमेश्वर के प्यारे। श्लोक करण कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोई, नानक तिस बलिहारण, जल थल महियल सोए। अष्टपदी करण करावन करण जोग, जुत्स पावै सोई होग, खिन में थापो थापन हारा, अंत नहीं किश पारा वारा। हुक्मे तार तर रहावै, हुक्मे उपजै हुक्म समावै, हुक्मे ऊच नीच व्यवहार, हुक्मे अनक रंग प्रकार, कर कर देखै अपनी वड्याई, नानक सब मैं रहया समाई। प्रभ पावै मानुगत पावै, प्रभ पावै ता पाथर तरावै, प्रभ पावै बिन सास्ते राखै, प्रभ पावै ता हर गुण पाखै, प्रभ पावै ता पत तो धारै, आप करै अपन बिचारै, दोहां सिरियां का आप स्वामी, खेलै बिकसै अंतर जामी। जो पावै सो कार करावै, नानक दृष्टि अवर न आवै, कहो मानुक ते क्या होय आवै। जुतस पावै सोई करावै, इसके हाथ होय ता सब किछ ले, जुतस पावै सोई करी, अन जानत बिख्या मैं रचै, जी जानत अपने आप बचै।

आज्ञाकारी बपरा जियो, जो तिस भावै सोई फुन थियो। कबहू ऊच नीच में बसै, कबहू सोग हर खरंग हसै। कबहू निंद चिंद व्यवहार, कबहू ऊब आकाश पयाल। कबहू बेता ब्रह्म विचारु, नानक आप मिलावनहार। कबहू निरत करै बहु भांत, कबहू सोए रह दिन रात। कबहू महा क्रोध बिकराल, कबहू सर्ब की हो तुरवाल।

कै दुखन सोभा ते ही न संत के हते को रखे न कोई संत कै दुखन थान भ्रष्ट हुए संत कृपाल कृपा जी करै नानक संत संग निंदक पी तरै संत के दुखन ते मुख पावै संतन कै दुखन काग जौन लवै संतन कै दुखन सर्प जून पाए संत कै दुखन त्रिगत जून किरमाए संतन कै दुखन तृष्णा मै जलाए संत कै दुखन सब को शलाए संत कै दुखन ते सब जाए संत कै दुखन नीच नचाए संत दुखी का थाउ को नाहे नानक संत पावै ता ओए पीगत पाहे संत कै नंदक महातताई संत कै नंदक हन टिकन ना पाई संत कै नंदक महात्यारा संत कै नंदक परमेश्वर मारा संत कै नंदक राज तेहीन संत कै नंदक दुखी अरदीन संत कै नंदको सर्व रोग संत कै नंदको सदा बिजोग संत कै निंदा दुख मैं दुख नानक संत पावै ता उसका पी होए मोख संत का दुखी सदा पवित्र संत का दुखी के सहका नहीं मैतु संत के दुखी को डान लग गए संत के दुखी को सब त्याग गए संत का दुखी महाअहंकारी संत का दुखी सदा बेकारी संत का दुखी जन्म मरए संत की दुख ना सुख ते डराए संत के दुखी को ना ही ठाओ नानक संत भावै ता लय मिलाए संत का दुखी अद बीच ते टूटाए संत का दुखी कदै काज ना पहुंचाए संत के दुखी को ध्यान भ्रमाई है संत का दुखी उजड़ पाई है संत का दुखी अंतर ते थोथा जो सास बिना मृत की लोथा संत के दुखी की जड़ किश नाहे अपन बीजा पे ही खाहे संत के दुखी को अवरण राखन हारू नानक संत पावै ता लय उबार संत का दुखी ओं बिल लाए जो जल पीऊन मछली तड़फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजाए जो पाव कींद नहीं त्रापाए संत का दुखी छुटा केला जो बुआर तिल खेत माहे दुहिला संत का दुखी धर्म ते रह तू संत का दुखी सदमिथ्या कह तू किरत निंदका तुरही पाया नानक जोत सुभावै सोई थिया संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए संत के दुखी को दर गए मिले सजाए संत का दुखी सदा सहकाई है संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है संत के दुखी की पूजा ना आसा संत का दुखी उठ चले निराशा संत का दुख ना त्रिष्टै कोए जैसा भावै तैसा कोई होए भया कीर्तना मेटै कोए नानक जानै सच्चा सोए सब कर तिसको करणै हार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभु की औसत करहु दिन रात सहते आवु सास ग्रासो सब कुछ वरतै तिसका किया जैसा करी तैसा को थिया अपना खील आप करण हार दूसर कौन कह बिचारू जिसनों कृपा करत साप नाम दी वड पागी नानक जन से सलोक तजो सियानप सुरजन हो सिमरो हर हर राय का सर मन रख हो नानक दुख परम पाओ जाय अष्टपदी मानु की टेवृति सब जानु देवन को एक भगवान जिसके दिए रह गाये बौरन तृष्णा लग आये मार राख को आप मानु कह कृष्णाई हाथ तिसका हुकम भू सुख होए तिसका नाम राखंट परोए सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिघन न लागे कोई उसत मन मैं कर निरंकार कर मन मेरी सत व्यवहार निर्मल रसना अमृत पियो सदा सुहेला कर लह जियो नैनो पे ठाकुर का रंग सात संग बिनसे सब संग चरण चलो मार गोबिंद मिटै पाप जपिए हर बिंद कर हर कर्म श्रवण हर कथा हर दरगह नानकू जल मथा वट भागी तीजन जग माए सदा सुधार के गुण गाए राम नाम जो करें विचार से तनवंत गणी संसार मान तन मुख बोलै हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पछैनै तुत कियो सोझी जानै नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिन निरंजन जानिया गुर प्रसाद अपने आप सुजै की जानु तृष्णा बुझै सा संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते हो अर्जन रहत आंदन कीर्तन केवल बखियान ग्रिस्त मै सोई निर्बान एक ऊपर जिस जन की आसा तिसकी कटिए जम की पासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक सन लागे दुख जिस कुहार प्र मंच ते आवै सो संत सुहेला नहीं डुलावै जिस प्रभ अपना कृपा करै सो सेवको किस ते डरै जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्ज में आप समाया सोधत सोधत सोधत सीजिया गुर प्रसाद तत् सब बूझिया जब देखो तब सब किश मूल नानक सो सूखम सोई अस्थूल नै के जन्म नै किश मरै आपन चलते आप ही करै आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट आज्ञाकारी तारी सब सृष्ट आपे आप सगल मैं आप
अनक जुगत रच थाप थाप अबनाशी नाई किश खंड तारन तार हो ब्रह्मांड अलाख पे पुरख परताप आप जपाए ता नानक जाप जिन प्रभ जाता सो सोभा वंत सगल संसार उदरै तन मंत सगल संसार उदरै तन मंत प्रभ के सेवक सगल उदाहरण प्रभ के सेवक दुख बिसारण आपे मेले कृपाल गुर का शब्द जपै निहाल उनकी सेवा सोई लागै जिसनु कृपा करह बड भागै नाम जपत पावै बिश्राम नानक तन पुर कौ तुम करमान जो किश करै सो प्रभ कै रंग सदा सदा बसै हर संग सह सुभाय होवै सो होए करणै हार पछाणै सोए प्रभ का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना

अष्टपदी टूटी गांडन हार गोपालु सर्व जी आपे प्रतपालु सगल की चिंता जिस मन माहे तिस्ते व्यर्था कोई नाही रे मन मेरी सदा हर जाप अविनाशी प्रभ आपे आपु आपन किया कछु न होए जे सो प्राणी लोचै कोए तिस बिन नाही तेरे किस काम गत नानक जापे कर नाम रूपवंत होए नाही मोहै प्रभ की जोत सगल कट सो है धनवंता होए क्या को गर्भ है जा सब कै तिसका दिया दर्भ है अतसूरा जे को कहावै प्रभ की कला बिना कहतावै जे को होए बह दातार तस दे नार जानै गावार जिस गुर प्रसाद टूटै हो रूग नानक सोजन सदा रूग ज्यों मंदर को थामै थंबन त्यों गुर का शब्द मन अस्थंबन ज्यों पाखा नाव चढ़त रहे प्राणी गुर चरण लगत निस्तरै ज्यों अंधकार दीपक प्रगास गुर दर्शन देख मन होए बिगास

पूर्व लिखे का लिखिया पाइये। दुख सुख प्रभ देवनहार, अवर त्याग तुत सह चतार, जो कछ करे सोई सुख मान, भूला काए प्रजान। कौन बसताई तेरे संग, लपट रहे रस लोभी पतंग। राम नाम जप हिरदे माहे, नानक पत सेती घर जाहे। जिस वखर को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया। ताजब मान लिहो मन मोल, राम नाम हिरदे मैं तोल। लाद के संतन संग चाल, अवर त्याग बिख्या जंजाल। तन तन कह सब कोए, मुख उजल हर दर गै सोए। इहो वापार बिरला वापार, नानक ताकै सद बलिहारै। चरण साध के तोय तोय पियो, अर्प साध को अपना जियो। साध की तूर करो इशनान, साधु पर जाइए कुर्बान। साध सेवा वड पागी पाईए, साध संग हर कीर्तन गाईए। अनक बिघन ते साधु राखै, हर गुण गाय अमृत रस चाखै। उठ गई संतै दर आया, सर्व सुख नानक ते पाया। मृत को जी वालनहार, भूखे को देवते आधार। सर्वण दान जाकी दृष्टि माहे, पूर्व लिखे का लहना पाहे। सब के तिसकाउ करने जोग, तस्मिन दूसर हुआ ना होग। जाप जानु सदा सदा दन रहनी, सब त्योच निर्मल करनी। कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सोजन निर्मल थिया। जाका मन गुर की प्रतीत, तिस जन आवे हर प्रभ चीत। भगत भगत सुनिए त्यो लोए, जा कह हृदय कोए। सच करनी सचता की रह तू, सच हृदय सतमो कह तू। साची दृष्ट साचा आकार, सच वर्त साचा पासार। पार ब्रह्म जन सच कर जाता, नानक सो जानो सच समाता। श्लोक रूप न रेख न रंग, किश त्रिगुण ते प्रपन्ना। तिस बुझाए नानका, जिस हो वैसो प्रसन्न। अष्टपदी अविनाशी ब्रह्मन मैं राख, मानो की तू प्री त्याग। तिस्ते परै नाई किश कोए, सर्वण निरंतरे को सोए। आपे बीना आपे दाना, गैर गंभीर गहीर सुजाना। पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद, कृपा निधान दयाल बख्शंद। सा तेरी की चरणी पाऊ, नानक मन इहो अनराऊ। मनसा पूरन शरणा जोग, जो कर पाया सोई होग। हरन परन जाका नेत्र फूर, तिसका मंत्र ना जाने होर। अणद्रु मंगल सद जाकाय, सर्व थोक सुनिय कर ताकै। राज मैं राजोग मैं जोगी, तब मैं तपीसर ग्रिस्त मैं भोगी। त्याय त्याय भगतै सुख पाया, नानक दस पुर का किन अंत ना पाया। जाकी लीला की मित नाय, सगल देव हरि अवगाहि। पिता का जन्म के जान पूत, सगल परोई अपने सूत। समत गया ध्यान जन दी, जन दास नाम त्या वैसी। देव गुण मैं जाको परमाए, जन मरै फिरया वै जाय। ऊच नीत के अस्थानू, जैसा जनावै तैसा नानक जानू। नाना रूप नाना जाकी रंग, नाना पे करै करंग। नाना विद कीनो विस्तार, प्रभ अविनाशी एकंकार। नाना चलत करे खन माहे, पूरे पूर्ण सब ठाई। नाना विद कर बणत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई। सब कर तिसके सब तिसके ठाऊ, जप जप जीवै नानक हर नाऊ। नाम के तारे सगले जंतु, नाम के तारे खंड ब्रह्मांडु। नाम के तारे सिमरत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान। नाम के तारे आगास पातालु, नाम के तारे सगल आकारु। नाम के तारे पुरिया सा पावनु, नाम के संग उदरे सुन सरावनु। कर कृपा विच से अपने नाम लाए, नानक चौथे पद मैं सो जन गत पाए। रूप सतु जाका सत स्थान, पुरख सत केवल प्रधान। करतु सत सत जाकी बाणी, सत पुरख सा मैं समाणी। सत कर्म जाकी रचना, सत मूल सत सत उत्पातु। सत करनी निर्मल निर्मली, जिसे बुझाई तिसे सा भली। सत नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुरते पाई। सत बचन साधु उपदेश, सत जन जाकर दे परवेश। सत निरत बूझै जे कोए, नाम जापत ताकि गत होए। आप सत किया सब सत, आपे जाने अपनी मित गत। जिसकी श्रेष्ठ सो करण हार, अवर न बूझ करत बिचारु। करते की मैत न जाने किया, नानक जूथ सुभाव है सुवर्तिया। बिस्मन बिस्म भई बिस्माद, जिन बूझ जत साया सुवा।

जिन जने अपना प्रभु पछाता सो जन सर्वथोक का दाता तिसकी शरण सर्व सुख पावै तिसके दर्श सब पाप मिटावै अवर सियानप सगली शाड तिस जन की तू सेवा लाग आवण जान ना हो वही तेरा नानक तिस जन के पूजो सद पैरा सलोक सत पुरख जिन जानिया सतगुर ते

हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चीत, चरण कमल राखो मन महाहे, जन्म जन्म के किल बिख जाहे। आप जपो अवरा नाम जपावो, सुनत कहत रहत गत पावो, सार भूत सतर को नाओ, सह सुभाय नानक गुण गाओ। गुण गाव तेरी उतर समैल, बिंस जाय हो मैं बिखफैल, होए चिंत बसै सुख नाल, सास गिरास हर नाम संभाल, छाड़ सियानप सगली मना, सास संग पावै सच धना। हर पूंजी संच करो व्यवहार, इहां सुख दरगह जयकार, सर्व निरंतर एको देख, कौ नानक जा कै मस्तक लेख। एको जप एको सलाह, एक सिमर एको मन आह, एक सके गुण गाओ अनंत, मंथन जाप एक भगवंत। एको एक एक हर आप, पूर्ण पूरे प्रव्याप, अनक विस्थार एक ते भय, एक अराध पराशत गए। मंथन अंतर एक प्रभराता, गुरु प्रसाद नानक।

अध्याय अष्टपदी जाचक जन जाचे प्रभदान कर कृपा देवो हर नाम साजन की मांगो धूर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गाऊ सास सास प्रभ तुम्हें त्याऊ चरण कम सो लाग्या प्रीत भक्त करो प्रभ की नित नीत एक ओट एको आधार नानक मंगे नाम प्रभ सार प्रभ की दृष्ट मा सुख होए अरस पावे बिरला कोए जिन चाख्या से जन तृप्ताने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने सुपर परे प्रेम रस रंग उपजे चाओ साध कै संग परे सरनाम सब त्याग अंतर प्रगास अंत दिन लिव लाग बटभागी जप्या प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए शिव की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभ होए दयाल शिव की नो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन पया जन्म मरण दुख भ्रम गया शिपुनी सबदा सब पूरी रब रहा सा संग हजूरी जिसका साथ तन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए सुख बिसरै जे काल ना भानै सुख बिसरै जे किया जानै सुख बिसरै जिन सब कुछ दिया सुख बिसरै जे जीवन जिया सुख बिसरै जे अग्नि में राखै गुरप्रसाद को बिरला लाखै सो क्यों बिसरै जे बिकते काड जन्म जन्म का टूटा गांड गुरपुरै तत एह बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत करो एहो काम आन त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पाव आप जपो अवरा नाम जपाव भगत पाए तरिय संसार बिन भक्ति तन हो शीशार सर्व कल्याण सुख निद नाम बूट जात पाए विश्राम सकल दुखा वतनास नानक नाम जपो गुणतास उपजी प्रीत प्रेम रस आओ मंत्र नंत्र एही सुहाओ नेत्र उपेक दर्शक होए मन बिकसे साध चरण धोए भक्त जना के मंतन रंग बिरला को पावे संग एक बस

जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तब इनमैल कहो क्या तोता। जय निरंजन निरंकार निर्वाण तय कौन कुमान कौन अभिमान। जय स्वरूप केवल जगदीश तय शाल शुद्र लगत को कीस। जय जोत स्वरूपी जोत संग समावै तह किस भूख कवन तृप्तावै करण करावण करने हारो नानक करते का नाय सुमार। जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई। जय सर्व कला पे प्रवीण तै भेद कतेब कहाँ को चीन। जब अपन आप उतार है तो सगन अपसगन कहाँ विचार है। जय अपन ऊंच अपन आप नेरा तै कौन ठाकुर कौन कही है चेहराज बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानो आप। जय शाला शेदा भेद सुमाया ऊह किसे व्याप्त माया आपस को आपे आदेश ते गुण का नाही प्रवेश। जय कै एक एक भगवंता तै कौन अचिंत किस लागे चिंता। जय अपन आप पति आरा तै कौन कथे कौन सुनने हारा बहु बेअंत ऊंच ते ऊंचा नानक आपस को आपे पहुचा। जय आप रचो परपंच कार ते गुण मैं कीनो विस्थार पापुन तै पई कहावत को नरक को सुर्ग बशावत आल जाल माया जंजाल हो मैं मोह भ्रम पै पार। दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार की बखियान अपन खेल आप कर देखा खेल संकोचा तो नानक कह। जय अवगत भगत है आप जय पसरै पसार संत प्रताप दुह पाक आपे धनी उनकी शोभा उन्हों बनी आपे कौत करे अंत चोज आपे रस भोग निर्जोग जिस पावे।

एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुपंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारम बार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साधके बचन अमलीक लाल यह रतन सुनत कमावत होत उधार आप तरह लोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाद वाजे सुन सुन अनंद

सरन योग सुन सरनी आए, कर कृपा प्रभा मिलाए, मिट गए बैर भय सबरेन, अमृत नाम सात संग लैन, सो प्रसन्न भय गुरुदेव, पूर्ण होई सेव की सेव, आल जंजाल विकार ते रहते, राम नाम सुन रसना कहते।

समाटी तैसा मृत तैसी भी खाटी तैसा मान तैसा महान तैसा रंक तैसा राजान जो वर्ताए साई जुगत नानको परख यह जीवन मुकत पार ब्रह्म के सगले ठाओ जिस जिस का रखे तैसा तिन्नाओ आपे करन करावन जोग प्रभावै सोई फुन होग पसरे आप होए नंतरंग लखे जाए पार ब्रह्म के रंग जैसी मात देता।